0: गरिने बोनस चाउचाउ।
1: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर्स शुक्ला गण्डकी 7 13 प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 98560 2279।
2: प्रणाम अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराही 103.8 मेगाहर्ट्ज़ अंतर मन के आवाज।

0: 来到诺基亚呐，
1: 安呐，大明马海呐，你办你麻烦呐，
0: 买出塞丁车上来，干呐，反战出飞马都什么嘛？
2: वो पॉकेट गोरी पैसा तो अने घाटी मात्र गोल्ड स्टाइल मेरो नहीं या तो हीरा डेसिंग नॉन इट बोल्ड अल्लू

0: 103 थोपलो 8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टेशन 1 स्टूडियो साइन्चेल
2: अहिले राति को 9 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पो चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो घर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: दही खाए सारे मिठो पकाए त स्वाकई एक पैकेट ले पेट भरी नि के हो भना पकाई
1: यो हो बोनस चाल चाल।